0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: जी लिस्नर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
14: वालेकुम सलाम।
13: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
14: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम एक है اس کو نوجوانوں تک اقبال کی سوچ کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہت عرصے بعد کلام اقبال کو دوبارہ جو ہے ایک نئے کے ساتھ جو ہے پیش کیا گیا ہے اور ایک نئے اپوزیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ ہے, ان شاء اللہ یہ کام جاری رہے گا.
3: ہم سر سے ان کا پیغام لیں گے حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اس حوالے سے. جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
15: میں سمجھتا ہوں کہ جی اہمیت جو ہے وہ اس ظاہر ہوتی ہے کہ شخصیت کا یوم پیدائش ہے جن کے تصور کی بنیاد پر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا, اور ایسی شخصیت جو پوری مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے, اور ایسی شخصیت جن کے کلام نے جو ہے پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک اعتماد اور ایک اپنی پہچان ایک خودی اور ایک اعتماد پیدا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دن اہم ہے اور ہماری کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سب جو ہے نہ صرف اقبال کے پیغام کو سمجھے بلکہ اس سے عملی رہنمائی بھی حاصل کریں.
16: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
1: You're listening
0: on 01274
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: تعملون.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306666.
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: Ya Rasool Allah.
0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
10: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: saferaider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
2: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
14: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत्र रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत्र रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: अप्रोच हो गई, तो पैसे से खुशी नहीं तोली जा सकती, पैसे से आपको सुकून नहीं मिलता। पैसा आपकी तबीयत में थोड़ी बहुत शायद खराबियां लाता है, अच्छाई बहुत कम लाता है। याद कीजिएगा इस बात को, याद रखिएगा। बल्कि तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले बच्ची को रुख्सत किया जाता था सुर्ख जोड़े में, तो कहा जाता था कि यहां से जनाजा ही निकले, सफेद कफन में ही निकलना इस घर से। लेकिन आप सब हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप सब हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बाशऊर हैं, और देखते हैं ज़माने में वक्त के क्या हालात, किस तरफ हवा चल पड़ी है कि बर्दाश्त नहीं रही। पहली बात तो यही है कि पहले होता था जी ख़ानदान भरा पूरा है, जैसे आप देखिए इस नॉवल में बताया गया है कि वो चची जान बेवा हैं, वो साथ रहती हैं। अभी तो आपको जब इनकी सास का तारुफ होगा, ये तो क्योंकि जहांगीर मिर्ज़ा जो हैं वो नौकरी पेशा हैं, वहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं इसलिए वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके जब बताया जाएगा कि दादी अम्मा के घर के हालात क्या हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कितने कितने दो दो तीन तीन ख़ानदान मिल के वहाँ पे रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। हमेशा बचपन से सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, लिखा भी, कोट भी किया, इत्तफाक़ में बरकत है। तो अब कहाँ गया वो इत्तफाक़? जब इत्तफाक नहीं होगा तो बरकत कहां से आएगी, खुद सोच लीजिए। लड़की है तो वो चाहती है कि बस लड़का अकेला हो, शायद वो आसमान से उतरे और ना उसके माँ बाप हो, ना उसका कोई बहन भाई हो, ना कोई अजीज रिश्तेदार, बस हम हो और वो हो। लड़के जो हैं वो भी इस तरफ चल पड़े कि जी लड़कियों की जो डिमांड है वो उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं, जी हजूरी है एक किस्म की। हालांकि जो कल बात हुई थी ना हकूक और फराइज की, तो वो बहुत समय ने करा, बड़ा गहरा, बड़ा तफसील तलब वो टॉपिक है कि उस पर बात हो सकती है, बात कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि किस किस चीज़ की बात करेंगे, कितनी बात करेंगे। जब तक इंसान अपने अंदर खुद से तब्दीली ना लाना चाहे, जब तक उसकी वो तरबियत वैसी नहीं होगी, उसको तालीम वो नहीं दी जाएगी, तो इंसान फिर ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे क्या तालीम दी जाती है, आप खुद समझदार हैं, जानते हैं हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या सिखाया जाता है, कैसा माहौल है। उसे पीयर प्रेशर कहिए, वालिदैन की तरबियत कहिए, अब तो माएँ भी, माओं का बहुत किरदार होता है। वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जी जहाँ रिश्ता करना है वहाँ माँ को देखिए, जैसी माँ वैसी बेटी। तो आजकल तो माएँ भी कहती हैं हाँ भाई हाँ, हमारी बच्ची ससुराल में साथ नहीं रहेगी, अकेली रहेगी। तो किस तरफ जा रहे हैं आप? और फिर दीन को इस्तेमाल करते हैं हम, माजरत के साथ आप मुत्तफिक ना भी हो हमारी बात से, आप अपनी राय जरूर रखते हैं, इजहार राय कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन अगर आप दीन की तरफ भी जाएं तो ये बात है कि वहां पे तो इत्तफाक की बात कही गई, सिला रहमी की बात की गई, रिश्ते जोड़ने की हमेशा बात करता है दीन। कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप रिश्तेदारों से ताल्लुक कता ताल्लुकी कर लें, कता रहमी करें, उनसे आप ताल्लुक तोड़ लें। इसीलिए जब अकेला होता है ना लड़का लड़की, जब जिंदगी का आगाज होता है, शादी होती है, तो वहां कोई बड़ा छोटा होना चाहिए कि जिसकी कुछ शर्म हया हो, जिसका कोई लिहाज हो, घर में आप मिलजुल के रहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा फिर आपको दबाना पड़ता है, आप में बर्दाश्त आती है कि जी दूसरे भी सुन रहे हैं। अदब, आदाब, तहजीब, लिहाज, मुरव्वत, ये चीज़ें सामीने कराम कम से कम होती जा रही हैं। खुदारा इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, इन पे बात करने की ज़रूरत है। मत अपनी बच्चियों को ये दर्स दीजिए कि वो जाएं और उसके बाद वो किसी से ताल्लुक ना रखें। और अगर आप बात करेंगे कि दीन की माजरत के साथ जितना दीन को हमने भी समझा है, गुज़िश्ता 15-18 साल हो गए हैं इसको समझते हुए कुरान के ज़रिए से और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी उससे समझते हुए, तो कहीं पर भी ये बात नहीं है। कौन से पर्दे करते हैं आपके जी, आप घर पे नहीं रह सकते ससुर के साथ, देवर के साथ या जेठ के साथ? पहले भी तो लोग रहते थे, बड़ी अदब आदाब के साथ रहते थे, बड़े तरीके से रहते थे, आज भी आप रह सकते हैं। और ये नहीं है कि बेपर्दगी होती है, अब वो बात एक बहस अलहदा से है कि पर्दे का असल मतलब क्या है, मफहूम क्या है, या पर्दा किसे कहते हैं। पर्दा वैसे माजरत के साथ आप शायद बहुत से लोग ना जानते हो, पर्दा उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है। अरबी में तो हिजाब आता है, जिसे अगर अंग्रेजी में तर्जुमा किया जाए तो उसका मतलब बनता है मॉडेस्टी। تو آپ کو موڈیسٹی سکھائی جاتی ہے دین میں, اس میں بے حجابی نہیں سکھائی جاتی, اس میں بد تہذیبی نہیں سکھائی جاتی, اس میں ادب احترام آتا ہے لوگوں کا, اس میں دوسروں کا خیال کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ دوسروں کے احساسات اور جذبات جو ہیں آپ ان کا بھی خیال کریں اپنے ساتھ ساتھ. بات انٹرلنکڈ ہے, وہی جو کل بات ہوئی تھی نا حقوق اور فرائض کی, تو ساس کا اپنا فرض ہے, حقوق ہیں, بہو ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں, اپنے فرائض ہیں, شوہر کے اپنے, بیوی کے اپنے, اور گھر میں جو بزرگ بڑے ہیں ان کے اپنے. تو ہر کوئی جب اپنے حقوق سمجھے گا, اپنے فرائض کی طرف توجہ دے گا, تو پھر یہ معاملات زندگی جو ہے نا یہ بہتر ہو جائیں گے, خوبصورت ہو جائیں گے, بہت سے لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے اگر برداشت تھوڑی سی آئے گی. جب اکیلے لڑکا لڑکی ہوتے ہیں نا, زندگی شروع کرتے ہیں, اب گھر پہ تو اور کوئی ہے نہیں, وہ دونوں اکیلے ہیں دلہا دلہن, تو بھائی جو جی چاہے, جو ان کے جی میں آتا ہے وہ نکال دیتے ہیں زبان سے, جسے کہتے ہیں نا اپنا اندر کا سب غبار نکال دیتے ہیں. کوئی لحاظ نہیں ہوتا, کوئی احترام نہیں ہے شوہر کا, یا باقی لوگ تو کوئی ہیں ہی نہیں, تو پھر طلاقیں ہی ہوں گی اور کیا ہوگا. اور کل کو ایسی لڑکی یا ایسی بیوی کیسی ماں بنے گی, یہ سوچئے گا ذرا. وہ کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. بہت مختصر ہم بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے, کیونکہ سب لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. لیکن جب آنکھیں آپ چرا لیں اور آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط رویہ ہے. اپنے گھروں میں دیکھیے, سب سے پہلے وہاں پہ آپ اس چیز کو سوچئے کہ کیا آپ کو کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طریقے سے کرنا ہے. حکمت اور دانائی سے کام لیجئے. یہ جو میٹیریلسٹک اپروچ ہماری ہو گئی نا, اور جو تنہا تنہا رہنے کا شوق ہو گیا, یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی کا باعث بن رہا ہے. خصوصاً جو ایشین لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, یا جو دوسرے بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اگر اوور آل کہا جائے تو جو ایشیائی لوگ ہیں نا, وہ اس زندگی, اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے. ہاں, ینگ جنریشن کی بات نہیں کر رہے, وہ تو اب چاہتی ہی یہی ہے. آپ نے اس طرف ڈال دیا ان کو, روکا نہیں وقت پہ, آپ نے سمجھایا نہیں, بتایا نہیں, خود مثال قائم کرنی پڑتی ہے, سکھانا پڑتا ہے. ماؤں کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے. کہیں کہیں باپ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو اگلی آنے والی نسلیں ہیں نا, ان کی پھر تربیت کیا ہوگی. ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا سامعین کرام کہ جتنا انسان اپنے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اتنی اس کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ اپنے دین سے جڑتے ہیں, اور خصوصاً اگر آپ مسلمان ہیں تو ظاہر ہے آپ یقین رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر, اور قرآن اللہ کی آخری کتاب, وہ ہدایت ہے, ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے. ہم نے تو اسے ثواب کی کتاب بنا کے رکھ لیا. ہاں, کوئی خاص مہینہ آیا, کوئی خاص دن آئے, رمضان آیا, ربیع الاول آیا, محرم کے دن آئے, تو جی زور و شور سے اس کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے, اور بہت اس کو احترام کے طور پہ ہم اٹھا کے شیلف پہ رکھ دیتے ہیں, اور تلاوت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا اور حق ادا ہو گیا. سامعین کرام, قرآن کا حق یہ نہیں ہے ہرگز. اسی لیے کہا گیا نا, قرآن روز قیامت حجت بن کے آئے گا, آپ کے یا حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. کس طرح کی گواہی قرآن دے گا, کبھی سوچا ہم نے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ, تیرا یہ بندہ جو تھا, یہ میرے سے محبت رکھتا تھا قرآن سے, کیونکہ میں تیرا کلام ہوں, اس میں ہدایت تھی, اس نے اس ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. اور خلاف گواہی کیا ہوگی کہ یا اللہ, اس بندے نے صرف میرے سے بس عقیدت کی, ٹھیک ہے, صرف میری تلاوت کرتا رہا, اور شیلف پہ اوپر بڑے خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کے مجھے رکھ دیا جاتا تھا, نہ سمجھنے کی کوشش کی زندگی میں کبھی ایک بار بھی, اور نہ پھر اس پہ ظاہر ہے عمل کہاں سے آنا تھا, کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہمیں کیا معلوم کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر یا تو عربی سمجھیے, عربی سیکھیے, پہلی بات. دوسری بات, اگر نہیں آپ سیکھ سکتے, نہیں آپ کو آتی ہے, تو پھر آپ اس کا ترجمہ, اتھینٹک ترجمہ جو ہے, اس کو دیکھیے, اس کو پڑھیے, ایک مرتبہ روانی سے پڑھیے, اور اس کے بعد پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ پہلے صرف ترجمہ پڑھیے, وداؤٹ بینگ بائسڈ, विद ओपन हार्ट, ओपन माइंड आप उसे खोलिए और पढ़िए कि अल्लाह क्या कह रहा है हमसे, वो क्या चाहता है हमसे। और आप हैरान हो जाएंगे कुरान पाक में जो अहकामात हैं, यानी डूज एंड डोंट, वो तो सिर्फ 3% हैं, बाकी बहुत ज्यादा इखलाकियात पे जोर है, मामलात पे जोर है। हम उल्टा चलते हैं, हमारी चाल ही उल्टी है, इबादात पे बहुत जोर और मामलात में हम बहुत पीछे। बहरहाल वक्त है एक ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक।
1: ब्रैडफोर्ड नंबर 1 एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, Your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी मोदी सामी ने कराम, बहुत खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। समीरा साहिबा, आपके नाम इस गीत को किया था, आपको मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है, साथ ही साथ नाहिद साहिबा आपके नाम इस गीत को हमने किया, बहुत खूबसूरत सा गीत था, और जनाब चौधरी रुखसार साहब आपके नाम इस गीत को किया, जनाब तारिक भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बिल्कुल जनाब आपकी हर बात का हमें एतबार है, क्योंकि इतने खलूस से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं और बग़ौर सुनते हैं प्रोग्राम को। अब जो कॉल पे हैं उनसे गुजारिश है कि बस एक मिनट इंतज़ार कीजिए, ये खूबसूरत सा गीत हम लगा लें तो फिर आपसे बात करते हैं, और फिलहाल सामीन कराम इस गीत को सुनिएगा। जी, जब हम कॉल की तरफ बढ़े तो कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी थी, अब जो भी कॉल कर रहे थे वो दोबारा कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमने आपके लिए तो गीत लगा दिया था फौरन ताकि आपसे बात हो सके, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा भी शामिल हो सकते हैं, गीत हम खूबसूरत सा आपके लिए लगाएंगे, तो चलिए गीत सुनिए, हम कॉल पे आते हैं।

लेकिन जो हमने किसी को गाली दी, हमने किसी को बुरा भला कहा, हमने चोली खाई, हमने गीबत की, हमने वादा खिलाफी की, हमने अमानत में खयानत की किसी के, हमने किसी पर बोहतान तराजी की, किसी पे तोहमत लगा दी, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, वो तब तक माफ़ नहीं होंगे सामीने कराम जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। तो बंदों के हकूक़ को पहचानिए, अपने सोचिए कल के बारे में। रोज़े क़यामत हर शख्स ये चाहता है कि क़यामत के रोज़ वो बरीउज़िमा हो जाए और जन्नत में चला जाए, लेकिन किस तरह से होगा ये, अभी आपने सोचा किस तरह से होगा? बस अब इस हदीस के साथ बात को, इस मौजू को ख़त्म करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा के दरमियान बैठे पूछा कि तुम जानते हो कि तुम में से मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वही है कि जो गरीब है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा रोज़े क़यामत जो जाएगा अपने बहुत से नेका माल लेके, जी नमाजें, रोज़े, हज, उम्रे, जो कुछ उसने किए, जो खैरात की, जो ज़कात दी, और वो समझेगा कि वो बहुत अमीर है, लेकिन उसने किसी को गाली दी, किसी का हक खाया, किसी के साथ ज्यादती की, तो रोज़े क़यामत क्या होगा उसके पास? सिर्फ और सिर्फ अपनी नेकियां दूसरे को देने के लिए। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उस शख्स की नेकियां जो थीं वो उस दूसरे शख्स को दे देंगे जिसके साथ उसने ज्यादती की, जिसका माल खाया, जिससे नाइंसाफी की, जिसको बुरा भला कहा, बोहतान लगाया, तोहमत लगाई, जिसकी चुगली खाई, जिसकी गीबत की। तो उसके जो गुनाह होंगे उस शख्स के, दूसरे शख्स के, वो इस शख्स को दे दिए जाएंगे। तो इसकी जो नेकियां हैं वो बांटते बांटते ख़त्म हो जाएंगी और वो खाली हाथ उस दिन रह जाएगा। वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है और ये अथेंटिक हदीस है कि मुफलिस होगा वो गरीब कहलाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक बस करम अपना फरमाए कि हम खाली हाथ ना रह जाएं। तो अपनी नेकियों पे, अपनी अच्छाइयों पे पहली बात यह है कि कोई ज़ोम नहीं रखना चाहिए, ठीक है, पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अपने जो है ना, अपना एहतसाब खुद करते रहना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर। किसी का हक तो नहीं खा लिया, किसी से ज्यादती तो नहीं कर दी, किसी बहन भाई से नाराज़ हैं तो उसको मना लें जब तक कि वो मौजूद हैं। खा वो बहन भाई है, खा वो पड़ोसी है, खा वो कोई भी है, लेकिन कहने का मकसद ये कि अपने मामलात ज़िंदगी जो है ना, उनको बेहतर करने की हमें बहुत बहुत बहुत ज़रूरत है। और ये दीन का बहुत अहम जुज़्व है, इबादात, और फिर दूसरी बात है मामलात। तो इन बातों को जहन में रखिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश है। और अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वक्त की जानिब। जी हाँ, हमारे पास वक्त अभी मौजूद है। और ये नाहिर साहिबा, बहुत सी नेक तमन्नाओं, बहुत सी दुआओं के साथ ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए, और रेहाना साहिबा आपकी फरमाइश थी ये आपके लिए भी हम पेश कर रहे हैं। लीजिए, सुनिएगा।

जी सामिने कराम, आपने खूबसूरत सा गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। और हमने पेश किया था किन के लिए जी, जो इस सिलसिले में शामिल हुए, समीरा साहिबा, चौधरी रुखसार साहब, आफ्ताब साहब और फायजा साहिबा। खसूसी तौर पर यह गीत आपके लिए था चौधरी रुखसार साहब। बहुत बहुत माजरत आपसे, क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त कॉल की कि जब बीत बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और हमें ऑन एयर आना था, इसलिए हम इंतहाई माजरत ख्वाह हैं आपसे कि बात मुकम्मल नहीं हो पाई और हमें जो है कॉल वो ड्रॉप करनी पड़ी। आप दोबारा बहरहाल शामिल हो सकते हैं प्लीज़, अगर आपके पास वक्त हो और सहूलत हो तो। और समीरा कराम, अब ये खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि आपके कहे बगैर मोहम्मद रफ़ी के 2-3 गीत पेश किए गए जी, तो लीजिए एक और मोहम्मद रफ़ी का खूबसूरत सा गीत समीरा साहिबा, खसूसी तौर पर आपके लिए।

जी सामीन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, खूबसूरत ही था तो बहुत उदास था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था इसलिए, और बहुत बहुत हम तहे दिल से मशकूर ममनून चौधरी रुखसार साहब आपके, कि आपने इतना वक्त निकाला और फिर अभी आपने फिर प्रोग्राम में शिरकत की, आपने की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये आने वाली खूबसूरत सी गज़ल जो है ये हम आपके नाम करते हैं चौधरी रुखसार साहब और जनाब तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, दो दो तीन तीन मरतबा हर घंटे में आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इतने ज़ौक व शौक के साथ आप प्रोग्राम को सुनते हैं, तहे दिल से हम आपके मशकूर ममनून। और जैसे आप दुआएं देते हैं, नवाजते हैं, हमारी भी बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अगले हफ्ते मुलाकात रहेगी। ये खूबसूरत सी गज़ल सुनिएगा।

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो।
1: मैंने तुम्हारे बगैर इतनी खामोशी महसूस की है कि मैं बोलना भूल गया।
0: मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि देखना, हमेशा के लिए खामोश हो जाओगी तुम।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेरी की जीनत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पसंद थी भगत सिंह साहब की लीड से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। आप भी अगर आज की इस महफिल गजल उसन शेरी का हिस्सा बनना चाहें, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। हमारी नशियात और गजल उसने छेड़ी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं या वेल्स में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी अपनी महफिल में शामिल करेंगे। अगर आप तशरीफ लाना चाहें तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। नंबर मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, 01274306677। बढ़ेंगे कमर्शियल के वक्फे की जानिब, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक और कमर्शियल के बाद हम आपको मैनचेस्टर के सनती शहर लिए चलेंगे जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाब चौधरी रुखसार अहमद साहब और पेज पर सबकत ली है आज सबसे अव्वल आने वाले जनाब चौधरी साहब हैं। हम उनका तोहफा चौधरी रुखसार अहमद साहब आपका लेकर हाजिर रहेंगे। मैं देख रहा हूँ घड़ी की जानिब भी इशारा कर रही, बस खामोश रिफत अब्बास, अब कमर्शियल का वक्त हो रहा है, खामोश हो जाते हैं।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: safewayrider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर, जहां हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब हमारे प्रोग्राम की जीनत व तौकीर में इजाफा कर रहे हैं। उनका तोहफा लेकर इस खूबसूरत शेर के साथ कि न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुशामदीद परदेसी मजीद साहब अभी अभी तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम कहना, शकील साहब, रिजवान साहब को, चौधरी रुखसार अहमद साहब को और नवीद साहब को भी बतौर खास मेरा सलाम कबूल हो। परदेसी मजीद साहब, हमने बिल्कुल उन्हें आपका ये तोहफा पहुंचा दिया है। अब हम जा रहे हैं जरा मैनचेस्टर तक, जहां मौजूद हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब, उनका तोहफा देने और आपको खुशामदीद कहते हैं। गजल उसने छेड़ी में, और पेश करते हैं ये तोहफा। चौधरी साहब आपकी नजर कबूल कीजिए। आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। मैंने आपको बताया था कि पेज पर हमारे मेहमान आते हैं, अपने दुख सुख, बीमारी, परेशानी और खुशियां हमसे शेयर करते हैं। हमारे मोहतरम खारियां गुजरात से परदेसी मजी साहब हमारी बज़्म में तशरीफ लाए हैं। कहते हैं कि मैं आज लेट हो गया हूं और इसकी वजह यह है कि आज मुझे बहुत तेज़ बुखार है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला और सेहत आजिला नसीब फरमाए। आजकल पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बात करो तो ये पता चलता है बुखार है, खांसी है। मेरे ख्याल कोई वायरस वहाँ ऐसा मौजूद है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कोई घबराने और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर बहुत तेज़ बुखार है तो दो पैरासीटामॉल खाइए और अल्लाह उससे अपना फजल व करम करेगा। तवक्कल तो अल्लाह, क्योंकि बीमार करने वाला भी वो है, शिफा देने वाला भी वो है। और अगर उसके बावजूद बुखार ना उतरे तो 4 घंटे के वक्फे से फिर 2 पैरासीटामॉल खाने का सिलसिला जारी रखें। अगर उसके बाद ना उतरे तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं। अल्लाह आप पर अपना करम और फजल फरमाए, क्योंकि अभी मैं लहिया पंजाब जा रहा हूं, जहां मौजूद हैं नज़ीर अहमद साहब और उनका तोहफा उनकी नज़र करना है। तो पंजाब ही में हम वो गीत भी आपकी नज़र कर देंगे, आपका तोहफा लगे हाथों पंजाब निमटा देंगे हम, जो हमारे मेहमान वहां से आते हैं। परदेसी मजीद साहब ने भी एक गीत सुनना चाहा है, तो पहले हम चलते हैं लहिया पंजाब पाकिस्तान, जहाँ नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र करते हैं और उसके बाद वहीं से हम खारियाँ की तरफ निकल जाएंगे और परदेसी मजीद साहब का तोहफा उनकी नज़र करेंगे। तो रुखसार अहमद साहब, प्रोग्राम में आप जब आ जाते हैं तो रौनक बढ़ जाती है। गीत पसंद आया, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, अभी एकदम मुझे लगा कि पर्दा शायद बाहर आया। खैर, जरूरी है हवादार रहना कमरे का, तो खिड़की और दरवाज़ा मैं खोल के रखता हूँ तो फ्रेश एयर आती रहती है। चलते हैं लहिया गुजरात पाकिस्तान, नज़ीर अहमद, जीते रहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, आपकी आमद बाई से मुसर्रत, आपका तोहफा बाई से इज्जत।

और आइए दोस्तों, खाड़ियां गुजरात चलते हैं और हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब ने कहा है कि अपने तमाम सामईन और नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। कल से मुझे शदीद बुखार है और कमजोरी जाहिर बुखार में हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। परदेश मजीद, मैंने अपने तमाम सामईन और नाजरीन से भी आपके लिए दुआ की दरख्वास्त की है कि अल्लाह ताला हमारे इस खूबसूरत लिसनर को, जो इस वक्त हमें खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान में शदीद बुखार के बावजूद हमारी बज़्म में शामिल हैं, इन्हें अपने करम से, अपने फजल से सेहत अता फरमाए, सेहत कामला और सेहत आजला मुकम्मल सेहतियाब फरमाए। और इंशाल्लाह हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी तबीयत जल्द ही सही हो जाएगी। परदेसी मजीद कहते हैं कि जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह कल आपका जो पैगाम आएगा तो यह आएगा कि बुखार उतर गया, मेरी तबीयत बेहतर है। इसलिए कि इतने बहुत से लोगों ने हाथ उठाए हैं, दुआ तो कबूल होनी होनी है। तो चलिए, आपका तोहफा जो आज गीत आपने मंतखब किया, क्योंकि हम अभी लैया से आ रहे हैं तो हमने कहा खाड़िया में गुजर रहे हैं तो सलाम करते चले, जीते रहिए, खुश रहिए और खुशखबरी सुनाइए कि बाप की तबीयत सही है कल के प्रोग्राम में। ओके, आपका तोहफा, आमद का बहुत शुक्रिया। बावजूद बुखार के आप हमारी बज में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाईस मसरत है कि आप किस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ और हमारे साथ। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी बावर्ची खाने की रानी हमारी प्यारी सी बिटिया, जिन्होंने हमारे सेगमेंट जो अब हम कमर्शियल के बाद आपकी खिदमत में लेकर हाजिर रहेंगे, एक शायर एक गीत दो फनकार के लिए गीत कल के लिए मुंतखब किया है। पूछ रही थी मैं मेरा गीत कब होगा जो मैंने मुंतखब किया है, तो हम अगर हमारे सुनने वाले बताते हैं ये तो हम उसे नोट कर लेते हैं और फिर हिसाब से हम उसे शामिल प्रोग्राम करते हैं। आपका गीत मैंने शायद 2 दिन पहले भी बताया था, आपने यही गीत पहले मुझे लिखाया था कि आपका गीत हम बुध के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ठीक है। और आपने जो गीत अभी अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम करने को कहा है वो इंशाल्लाह हम अपने सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार के बाद पेश करेंगे। जीती रहिए, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। कल की एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैं बताना भूल गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ और बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिलबर साहब का। वो यहाँ किसी काम से आए थे, उन्हें पता चला कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद था तो उन्होंने शीशे से सलाम किया, मैंने भी सलाम किया तो उन्होंने शीशे के पास मुँह लगा कर, वो तो अल्लाह का शुक्र है गीत बज रहा था, कहने के पंजा सट्टो। मैंने कहा जी, तो फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया पंजा सट्टो, तो फिर मैं पंजा सटने गया था बाहर और पंजा मैंने सट्टा। दिलबर भाई बहुत मासूम हो और बहुत ही दिलकश शख्सियत है आपकी। आपने गीत कल बताया था जो हम वक्त नहीं था पेश नहीं कर पाए थे, आज वो हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपका पंजा सट्टो नहीं भूलेंगे। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब। मुलाकात होगी एक शायर एक गीत दो फनकार के सेगमेंट में।
1: मल्टी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے
9: جی ہاں بیلز جہاں فش اینڈ چپس برگرز فل انگلش بریک فاسٹ فریش کیکس اینڈ مکرونز
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے آج ہی تشریف لائیے اوپن 7 ڈیز بیلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD6 1DA فون 01274306567 بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن
7: ارے سنتے ہیں اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے
8: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں
7: منگنی سالگرہ شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے
8: اور خوشبو لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے
7: منگلا کیٹرنگ 77 Athington Street بریڈ فوڈ BD8 ATY
8: ٹیلی فون 01274731555 منگلا کیٹرنگ سروسز UK
7: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں
7: ڈیجیٹل کوالٹی تیز اور دوستانہ سروس میل اور فیمیل فوٹوگرافرز
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے
7: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678
7: ایشین ویڈنگز UK.com جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk। अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद हमारे सोते मुजाहिदों और हमारे प्यारे प्यारे नादीदा लिसनर्स की हमारे हमराह मौजूद है। हम आपको भूलते नहीं हैं क्योंकि आपकी ये मोहब्बत है कि आप ऑनलाइन तशरीफ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं और हमें एहसास होता है कि हमारे बहुत से सुनने वाले हमारे हमराह दुनिया के चार कोनों में मौजूद हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। आज जो हमने गीत मुंतखब किया है ये गीत 1975 की एक फिल्म से है। फिल्म का नाम था पहचान। इसमें हीरो थे नदीम, शबनम और हमारी इससे एक बड़ी हसीन याद भी वाबस्ता है, वो भी हम उसका जिक्र करेंगे। जो गीत मुंतखब किया है उसके बोल हैं, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। उस जमाने के मकबूल मारूफ शायर जिन्होंने बेशुमार यादगार नगमात तहरीर किए, मसरूर अनवर ने तहरीर किया था और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मसरूर अनवर जैसे मशाक शायर फिल्मी और उन्होंने इस गीत को लिखा और इसे इसकी कंपोजिशन की उस्ताद मौसीकार जिनका पाकिस्तान में कोई सानी नहीं था, जिनका बनाई हुई धुन मेरे जात के साथ वाबस्ता हो गई। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब निसार बज़मी साहब ने इसकी मौसीकी तरतीब दी थी। निसार बज़मी साहब तहज्जुद गुजार शख्सियत थी आपकी माशाअल्लाह, और मौसीकी जो भी उन्होंने गीतों की मौसीकी दी वो मकबूलियत और शोहरत की तमाम बुलंदियों पर ठहरे। बेशुमार एजाजात से आपको नवाजा गया। निसार बज़मी साहब, मसरूर अनवर आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन एक ऐसा शाहकार तोहफा हमने उनका मुंतखब किया है जो आज भी जब हवा के जोश पर लोगों के कानों तक पहुंचता है तो शहद उंडेलता है। जी हाँ, फिल्म पहचान 1975 की, जिसके हीरो नदीम शबनम थे। हमारी जो हसीन याद वाबस्ता है वो ये कि हमारे कज़न हैं, नाम है उनका मुनव्वर सईद। तो मुनव्वर भाई ने कहा कि मियाँ मैं पहली बार फिल्म में आ रहा हूँ और ये फिल्म सबको देखनी है, तो हम बतौर ख़ास ये फिल्म पहचान देखने गए थे। हमारे यहाँ शाह फैसल कॉलोनी जो उस ज़माने में ड्रिक कॉलोनी कहलाती थी उसमें एक सिनेमा हुआ करता था, उसका नाम था शमा। और ड्रिक कॉलोनी में एक शमा था, उससे उसके अपोजिट एक दूसरा सिनेमा था उसका नाम था शबनम। ये शमा था जहाँ हमने ये पहचान देखी थी और इसके अपोजिट एक था शबनम। और डिग रोड में जहाँ एस बी जॉन भाई का मैंने कल जिक्र किया था, मरहूम जहाँ रहा करते थे एस बी जॉन साहब, वहाँ पर भी एक सिनेमा था और उसका नाम था एम्पीरियल। मुझे यकीन है इस बात का, शमा का तो मैं देख के आया हूँ, जाहिर है मैं मेरी रिहाइश वहीं की है डिग कॉलोनी की, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर आबाद है, मेरी भाभी बच्चे और भाई मेरा छोटा सब वहीं मुकीम है, तो जाना आना तो जाहिर रहता है। शमा भी ख़त्म हो गया, शबनम भी ख़त्म हो गया, इम्पीरियल की तरफ मेरा जाना नहीं हुआ। न मालूम वो मौजूद है या वो भी ख़त्म। आपको पता है सिनेमा हॉल का तो तकरीबन सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए कराची के, और वहाँ बड़ी बड़ी ऊँची इमारतें तामीर की गई जिनके नीचे मार्केट और ऊपर रिहायशी फ्लैट्स, उसमें ज़्यादा पैसा था।
سو شمع بھی نہیں ہے, شبنم بھی نہیں ہے, امپیریل کا مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہم منور بھائی کی وجہ سے یہ فلم پہچان دیکھنے گئے تھے, جس میں منور سعید صاحب جو ٹیلی ویژن کی مقبول, ویسے تو وہ بیسیکلی انجینئر تھے, ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, بہت بزرگ ہو گئے, تو وہ ٹیکنیکل جو انسٹیٹیوٹ تھا اس میں آپ پڑھایا کرتے تھے, اور اس کے بعد ڈراموں کا سلسلہ تو ان کے جاری تھا. ٹیلی ویژن پر جب بے انتہا ان کے ڈراموں کی مقبولیت ہو گئی تو اس کے بعد فلم کا رخ کیا, اور کراچی سے لاہور بھی منتقل ہو گیا. پہلے کراچی میں ہی مقیم تھے, پھر لاہور منتقل ہو گئے, اور ہم نے ان کی یہ فلم دیکھی تھی پہچان, جس کا گیت آج میں نے منتخب کیا ہے. تو آج کے شاعر مسرور انور, موسیقار نثار بزمی, فلم پہچان 1975 کی, اور جس میں ہیرو ندیم صاحب تھے اور ہیروئن شبنم صاحبہ تھی, اور یہ خوبصورت گیت جس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑے, اور نہ صرف ریکارڈ توڑے بلکہ

दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। अभी आप सुन रहे थे खान साहब मेहंदी हसन खान साहब को, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। अभी जिक्र हो रहा था शमा और शबनम सनमा का, और एकदम मुझे याद आया कि एक सनमा और भी हुआ करता था। उसका रास्ता एक काला छपरा कहलाता था, जहाँ जहाज, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल हमारे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर है, तो काला छपरा के पास से जहाज, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल हमारे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर है

ये पुरानी यादें हैं, याद रहता है। अब 1975 की फिल्म पहचान, गीत के बोल तहरीर किए हैं मसरूर अनवर ने, मौसीकी से संवारा है हमारे बहुत ही प्यारे से बुजुर्ग मौसीकार जनाब निसार बज़मी ने, हाजिर है आवाज़ दूसरा फनकार, कोयल ने कहा जाता था महनाज़।

समझता हूँ ये गीत मिक्सअप हो गए हैं जरा कहेंगे। हाँ ये वो गीत है जिसे मुंतखब किया था हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया ने अपनी कजन्स के लिए। Come on.

0: साहब आपका गीत मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जरूर ढूंढ निकालूंगा। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल्स का।
1: Advertising's ear catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
4: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
4: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। इससे पहले कि हम आपको डंक, गलत बात है ये रिफा साहब, आप गलत जगह का नाम लेने जा रहे थे, भाई हो जाती है, जबान कभी कभी फिसल जाती है। वेकफील्ड वकार साहब के तोहफे की जानिब लेकर चलें। हमारे हमराह मौजूद हैं ओल्डहम से, बर्नली से हमारे बहुत ही प्यारे से मेहमान जनाब शकील साहब, आइए उनसे मिलते हैं। मैं पानी पी लूँ, मेरा खल ड्राई हो रहा है, हालांकि इसकी गड़बड़ हो रही है।

0: बनले चलते हैं, मिलते हैं शकील भाई से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन। कैसे हैं शकील भाई?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बहुत फजल करम है।
1: पहले तो मजीद भाई और जितने बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: तो सबको अस्सलाम वालेकुम। खालिद मीर साहब है, नवीद भाई हैं, रिजवान रिजवीन किया लिया है, अयूब भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी साहब है, आशमी अवसवाल है, मायू परवेज साहब है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह है, अला शफी अहमद नकवी साहब, महबूब अली शाह साहब है, सूफी अब्दुल करीम साहब, और भी जितने सुनने वाले हैं सबको एक बार से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपके अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा।
1: छोटी सी गजल है, ये रूप सागर लिखने वाले हैं।
0: जी जी, अता कीजिए। बिस्मिल्लाह।
1: कहते हैं, ऐ जमाने तेरी रफ्तार से डर लगता है।
0: आहा, ऐ जमाने तेरी रफ्तार से डर लगता है,
1: अब तेरी दोस्ती से प्यार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। तुझ पे किन हवाओं का असर हुआ जाता है?
0: तुझ पे किन हवाओं का असर हुआ जाता है?
1: तेरे बदले हुए किरदार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। तुझे दुनिया में नाकाम देख नहीं सकता।
0: आहा,
1: जीत से अपनी तेरी हार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कीजिए।
1: तुझे दुनिया में नाकाम देख नहीं सकता, जीत से अपनी तेरी हार से डर लगता है।
0: आहा,
1: दिल को आता नहीं इजहार मोहब्बत करना।
0: दिल को आता ही नहीं इजहार मोहब्बत करना,
1: और मुझको तेरे इनकार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: क्या शुक्रिया। जिंदगी ने दिए हैं इतने गम हमको अब तो।
0: आहा,
1: जिंदगी ने दिए हैं
0: इतने गम
1: तो, अपनी खुशियों के भी गुलजार से डर लगता है।
0: भाई वाह वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह वाह, शकील भाई अता कीजिए।
1: जिंदगी ने दिए हैं इतने गम हमको अब तो, अपनी खुशियों के भी गुलजार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। इस कदर शोर का इन पांव की जंजीरों का,
0: आहा,
1: मुझको पायल की झनकार से डर लगता है।
0: ओए है, मुझको पायल की झनकार से डर लगता है, अता कीजिए इस कदर। आहा,
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं,
0: जी,
1: नुक्ता चीनी है दुनिया वालों का शेवा सागर।
0: नुक्ता चीनी है दुनिया वालों का शेवा सागर,
1: इसलिए अपनी ही गुफ्तार से डर लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया,
0: बहुत खूबसूरत इंतखाब। वाह वाह वाह वाह,
1: तो एक बशीर महताब है, उनकी गजल है।
0: जी अता कीजिए।
1: वो कहते हैं, रुख तुम्हारा हो जिधर हम भी उधर हो जाएंगे।
0: रुख तुम्हारा हो जिधर हम भी उधर हो जाएंगे,
1: तुमसे बिछड़ेंगे तो इधर बदर हो जाएंगे।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब है, क्या मतलब है रुख तुम्हारा?
1: रुख तुम्हारा हो जिधर हम भी उधर हो जाएंगे, तुमसे बिछड़ेंगे तो इधर बदर हो जाएंगे। शुक्रिया। जिंदगी के सफर में लुत्फ होगा तब नसीब।
0: जिंदगी के सफर में लुत्फ होगा तब नसीब,
1: हम ख्यालो हम नवाजम हम सफर हो जाएंगे।
0: क्या सच्ची बात है, क्या सच्ची बात है, लुत्फ जिंदगी का वाकई जब आता है, ऐसा कीजिए।
1: जिंदगी के सफर में लुत्फ होगा तब नसीब,
0: आहा,
1: ख्यालो हम नवाजम हम सफर हो जाएंगे।
0: क्या खूबसूरत प्यार में अंदाज। वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। आसमानों का सफर हम तय करेंगे एक रोज।
0: आसमानों का सफर हम तय करेंगे एक रोज,
1: जब हमारे हौसलों में बाल ऊपर हो जाएंगे।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। सादगी यूं ही अगर लादे रहे तो एक दिन, सब तुम्हारे अपने तुमसे बेखबर हो जाएंगे।
0: आए है, सादगी यूं ही, अता कीजिए।
1: सादगी यूं ही अगर लादे रहे तो एक दिन, सब तुम्हारे अपने तुमसे बेखबर
0: खबर हो जाएंगे। आहा, वाह वाह वाह वाह,
1: देखना जिस दिन
0: देखना जिस दिन उन्हें मकसद समझ में आएगा,
1: मंजिलों की जस्तजू में राह गुजर हो जाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत ख्याल, क्या ताना बाना है, वाह वाह वाह वाह।
1: साकी सागर की जरूरत ही कहा मेरे लिए, तेरी आंखों के ही प्याले
0: पुर असर हो जाएंगे। वाह वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, आंखों के प्याले क्या तजवी अता कीजिए।
1: साकी सागर की जरूरत ही कहा मेरे लिए, तेरी आंखों के ही प्याले
0: पुर असर हो जाएंगे। वाह वाह वाह वाह।
1: पोते हैं उर्दू अदब के, आप दामा डालिए।
0: ये तो बड़ी सच्ची बात कह दी, आहा क्या मिसरा है।
1: पोते हैं उर्दू अदब के, आप दाना डालिए, आने वाले कल में साए और समर हो जाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, दाना डालिए समर हो जाएंगे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, अता कीजिए।
1: पौधे हैं उर्दू अदब के, आप दाना डालिए, आने वाले कल में साए और समर हो जाएंगे।
0: वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया।
0: अता कीजिए।
1: वो न जाएंगे कभी माताब जुल्मत की तरफ, वो न जाएंगे कभी माताब जुल्मत की तरफ, वक्त पर अंजाम से वाकिफ अगर हो जाएंगे।
0: वक्त पर, भाई अता कीजिए, वक्त पर वाकिफ अगर,
1: न जाएंगे कभी माताब जुल्मत की तरफ,
0: बेशक
1: वक्त पर अंजाम से वाकिफ अगर हो जाएंगे।
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह, वक्त पर वाकिफ अंजाम से अगर हो जाएंगे, वाह वाह वाह वाह, बहुत शकील भाई, खूबसूरत इंतखाब हमेशा की तरह। और आपने दुआ की है परदेसी मजीद साहब, रौनक है हमारे प्रोग्राम की, वो और बाकायदगी से आकर इसकी रौनक बढ़ाते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सियामानल्लाह। और दोस्तों अभी बर्नली से हमारे हमराह मौजूद थे शकील भाई, हमेशा की तरह खूबसूरत इंतखाब होता है इनका, वो लेकर हाजिर थे। और चलते हैं हम

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था, हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर हैं जनाबे अय्यूब चौहान साहब ने गीत सुनने को कहा था, लेकिन मुझे जो गीत उन्होंने सुनना चाहा है वो उस आवाज़ में मिल नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। मैं मुझे जो मिला है मैं वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। गीत के बोल वही हैं जो आपने कहे हैं। देखते हैं कि ये क्या पगड़ लिखा हुआ है, टाइटल नहीं लिखा हुआ इसका, लेकिन बोल वही हैं जो आपने सुनना चाहे हैं। सो आपकी नज़र करते हैं, कबूल कीजिए। अगर यही गीत है वो

नहीं, ये मैं आपको मेहंदी हसन खान साहब की आवाज में ये गीत सुनवा देता हूँ भाई, यही कर सकता हूँ। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह है क्यों नहीं ये दस्तयाब है।

बावजूद कोशिश के मैं ढूंढ नहीं पाया और मेहंदी हसन खान साहब की आवाज में ये गीत आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं घर जाके चेक करूंगा कि क्या माला की आवाज में क्यों नहीं मिल रहा तोहफा जो हमें पेश करना था हमारे मोहतरम मोहम्मद अयूब चौहान साहब के, जो बहुत ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन हुस्न इत्तेफाक है कि आज ढूंढ नहीं पा रहा मैं।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं बल्ले, जहां शकील साहब अपनी पसंद का गीत सुनने के मुंतजर हैं। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुनी जा रही हैं। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी हिस्से में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल में शामिल होना चाहें तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। तो चलते हैं बन ले और पेश करते हैं तोहफा जनाबे शकील साहब का। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने जमान में रखे। तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

हमारे रियासत साहब कहीं बाहर गए थे और वो 10 मिनट में अपने अहले खाना के हमरा घर पहुंचने, कह रहे हम प्रोग्राम आपको पूरा सुन रहे हैं लेकिन हमारा तोहफा हम अपने घर में बैठकर ही वसूल करते हैं। ज़रूर सर आँखों पर ज़रूर वसूल कीजिए, आप तशरीफ़ लाइए। अभी तो हम कल डॉक्टर साहब आगाज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थी डॉक्टर मारूख साहिबा, लेकिन कल आप बहुत बिजी थी और आपकी शादी की सालगिरह थी और कहती हैं कि बस मैं हाजिर तो हो गई थी प्रोग्राम में लेकिन फोनों का ऐसा सिलसिला मुबारकबाद का चला कि मैं अपने पसंद का गीत सुन नहीं पाई। आपको हमारी जानिब से शादी की सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और नजरे बद से बचाए और ऐसी ढेरों सालगिरह आपका मुकद्दर हूँ। एक खूबसूरत कथा है कि खुदा करे कि तू उम्र जाविदा पाए, गमों यास और रंज तेरे करीब ना आए, तो मुस्कुराए तो अहबाब मुस्कुरा उठे, तेरा वजूद बहारों की जान कहलाए। ढेरों दुआएं आपके लिए। आप जिस कदर बाकायदगी से हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाती हैं वो हमारे लिए बाइस एहतराम, बाइस मोहब्बत है और बाइस फ़ख्र भी है।

और दोस्तों अब हम चल रहे हैं आपको लेकर नॉर्थ नाजमाबाद कराची पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारी हसीन जोड़ी रिजवान रिजवी और उनकी शरीक आयात अमरीन जहरा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, मैं खिड़की ज़रा सी कम कर दूँ वरना ये डिस्टर्ब करेंगी। मैंने कम कर दी है ताकि हवा की आवाज़ भी ना आए आपको और हमारे पर्दे उड़ने लगते हैं फिर। तो कराची पाकिस्तान से अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के लिए रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा जो तोहफा लाए हैं, राहत अंदूरी साहब मरहूम की एक खूबसूरत

गजल उन्होंने मुंतखब की है जो आप सबकी मोहब्बतों के नाम करना चाहते हैं कि चिरागों का घराना जल रहा है, चिरागों का घराना जल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, जवानी की हवाएं चल रही हैं, बुजुर्गों का खजाना चल रहा है, अभी हम जिंदगी से मिल न पाए, तारुफ गायबाना चल रहा है। क्या छोटी बहर की खूबसूरत गजल आपने हजरत राहत इंदौरी मरहूम की पसंद की है। अभी हम जिंदगी से मिल न पाए, तारुफ गायबाना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, वही दुनिया वही सांसें वही हम, वही दुनिया वही सांसें वही हम, वही सब कुछ पुराना चल रहा है। ज्यादा क्या तवक्का हो गजल से मियां, बस आबो जाना चल रहा है, ज्यादा क्या तवक्का हो गजल से मियां, बस आबो जाना चल रहा है, समंदर से किसी दिन फिर मिलेंगे, अभी पीना पिलाना चल रहा है, समंदर से किसी दिन फिर मिलेंगे, अभी पीना पिलाना चल रहा है, वही मैशर वही मिलने का वादा, वही बूढ़ा बहाना चल रहा है, वही मैशर वही मिलने का वादा, वही बूढ़ा बहाना चल रहा है। यहाँ एक मदरसा होता था पहले, यहाँ एक मदरसा होता था पहले मगर अब कारखाना चल रहा है, यहाँ एक मदरसा होता था पहले मगर अब कारखाना चल रहा है। बहुत खूबसूरत इंतखाब आपका, जीते रहिए, अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, नजरे बच से बचाए। और अब हम चल रहे हैं हडसफील्ड की हसीन फजाओं में, जहां मौजूद हैं हमारे रियासत साहब और उनके अहले खाना, और सुनना चाहते हैं ये गीत। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।

उनका नाम लिखिए भाई, उनकी जो भतीजी की आज जो सालगिरह है हमारी प्यारी सी बिटिया की, तो हम जरूर उन्हें विश कर देंगे। लेकिन अभी तो हम खुशामदीद कहना चाहेंगे नॉर्थ हॉल्ट लंदन से हमारे हमराह मौजूद हैं जनाबे शहरयार साहब, अपने अहल खाना के हमराह आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और एक खूबसूरत गजल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जो हम उनकी नजर कर रहे हैं। रिजवान, अगर आप उस प्यारी सी हमारी बिटिया अमरीन की भतीजी का नाम लिख दें तो हम नाम के साथ उन्हें मुबारकबाद पेश कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं उस गजल की जानिब। अय्यूब रुमानी की यह खूबसूरत गजल आवाज शौकत अली की है और सुनना चाहा है नॉर्थ हॉल लंदन से हमारे मोहतरम शहरयार साहब और उनके अहले खाना ने। तो हम ये उनकी नजर करते हैं, आपका गीत हमने नोट कर लिया है, जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे।

दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कराची पाकिस्तान नाथमाजमाबाद। मैंने देखा कि माइक मेरा जो था वो आस्तीन से ऑफ हो गया था। आज एक बहुत ही हसीन शहजादी, प्यारी सी बिटिया जो है वो अपनी सालगिरह मना रही है और नाम है उनका सैयदा आयमा जहरा। सालगिरह के पुरमसरत मौके पर दिल की तमाम गहराइयों से हमारी जानिब से, हमारे इलाके और बहुत से सुनने वालों की जानिब से जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपको सालगिरह के पुरमसरत मौके पर ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी ढेरों सालगिरह आपको दिखाए, आपके अम्मी अब्बू का साया आपके सर पर सलामत रखे और आपके इस हुस्न में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। भाई कोई नजर उतारो उस बच्ची की जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शानदार केक है। वाह वाह वाह, हम अपने हिस्से का इंतजार करेंगे। आयमा आयमा जहरा, तुम्हारे लिए इन खूबसूरत अशार की शक्ल में तोहफा है कि तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंस कर देखो कभी न वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। हमारी और हमारे इलाकों सुनने वालों की और देखने वालों की ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तालीम की दौलत से मालामाल करे, अम्मी अब्बू का साया सलामत रखे, खूब पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो और पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बनो। A happy birthday to you, many happy returns of the day.

और आइए दोस्तों, अब ये कैसे मुमकिन है कि हमारी बज़्म में हमारी प्यारी सी बिटिया आयला जहरा आयमा जहरा आए और आयमा जहरा को तोहफा न दिया जाए। थोड़ी सी ताखीर हो गई लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लव यू बेटा, आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: Revolution Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-2600-78।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274-731-555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548-419-678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ जाता है।

तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना किशोर कमियार की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं ये गीत आपको पसंद आया होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपको भी ये गीत पसंद आया और आपने कहा है कि आने वाला जो भी गीत होगा हमारे दोस्तों के नाम करना है जनाब, तो आपके दोस्तों के नाम करेंगे जिनमें शामिल हैं आसफ़ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, परवेज़ ख़ान महबूब लाई हैं, जहम हैं, तारक जुल्फी हैं, जवेद मीर हैं, तारक भट्ट हैं, शकील भाई हैं, हीरा हैं, आमर हैं, आमर शहजाद हैं, चौधरी उस्मान हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, वाजिद भाई हर्सफील्ड और अयूब हैं, चौधरी मनीर चक्की वाले हैं, शरफुद्दीन पापा ख्वाजा शरफुद्दीन हैं, सलीम भाई उर्फ रफ़ी और अतीका जी हैं, जहांगीर भाई ड्यूजबरी और जनाब नवीद राणा साहब स्विट्ज़रलैंड वाले और सभी दोस्तों के नाम आपकी तरफ से ये आने वाला गीत। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आप समाप्त कर रहे थे। सामने इस दौरान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जनाब भाई माजिद, हमारे साथ ही प्रेजेंटर भी हैं और नई नई शायरी का शौक और अशार लिखना शुरू किया उन्होंने, वो तशरीफ लाए हैं और तालियों की गूंज में सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे हैं भाई माजिद साहब?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का करम।
0: आपको तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहते हैं जी ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो पर।
1: थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
0: तो जनाब सुनाई कैसे हैं आप, क्या हाल हवाल हैं और नए नए शौक में आप क्या तोहफा लेके आए हमारे दोस्तों के लिए?
1: जी हाल हवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस कुछ जो है ना वो बात निकल रहे हैं शेरों की सूरत में।
0: जी जी।
1: और शोक तो नया नया पड़ा है, लेकिन मैं खुद हैरान भी हूँ परेशान भी हूँ कि कैसे कैसे लफ्ज मेरे दिलो दिमाग से निकल रहे हैं और क्या क्या चीज मैं लिख रहा हूँ। तो अगर आपकी वसाकत से मैं आपके सामने को अगर सुनाना चाहूँ तो मैं यकीन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि उनको भी मेरी ये शायरी पसंद आएगी
0: इंशाल्लाह जी। अरशाद।
1: लेकिन मैं ये पहले बताता चलूं कि ये जो मेरे आज जो मैं शेर पढ़ूंगा ना आपके प्रोग्राम में, ये थोड़े से यानी कि चोट खाए हुए इंसान के शेर होंगे।
0: वाह वाह।
1: तो फिर कोशिश करूंगा कि मैं हर तर्ज का शेर लिखूं जिसमें मोटिवेशनल भी होंगे, कुछ प्यार भरे अशार भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं उनमें ज्यादा कर होंगे ना वो एक लाइक एक दुखी और दर्द भरे इंसान वाले जो ख्यालात हैं वो होंगे।
0: जी जी अरशाद
1: जी, अर्ज करता हूँ जी। बड़ी बुरी आदत है भूलने की,

सामिन अभी आप समाप्त कर रहे थे उदित नारायण और काव्या अग्नि की बहुत ही खूबसूरत आवाज में बहुत प्यारा सा गीत। इस दौरान हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे साथी प्रेजेंटर, अब नए आने वाले जो प्रेजेंटर हैं अरफान साहब। ये लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे, बहुत ही शायरी सुनने को मिली, ये खुद भी लगता है शायरों के अभी तूफान आ गया है माशाल्लाह। तो यहाँ भी शायर, वहाँ हमारे दोस्त अभी माजिद भाई थे वो भी शुरू हो गए हैं, वो उन्होंने भी शायरी शुरू किया, अभी वो शामिल हुए थे। और यहाँ जो आए हैं ये भी शायर हैं जनाब, टिकटॉक के भी मास्टर हैं, उस पर भी हैं और इधर भी हैं, हर तरफ शाह जाने वाले लोग आ रहे हैं जी अब प्रोग्राम में। तो वो अपना क्यों कर रहे हैं सारे सिस्टम को, तो हम इतनी देर में आपके लिए कोई गीत प्ले करते हैं, चंद अशआर पेश करते हैं और साथ साथ फिर इनसे बात करेंगे। जब लहजे ही बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, जब लहजे ही बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, नई मैसर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी। जब लहजे ही बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, नई मैसर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी। वसल ही गुजरे लम्हे में अनमोल यादें, वसल में गुजरे लम्हे हैं अनमोल यादें, हिजर में सुख खुशियां राहतें कैसी, हिजर में सुख खुशियां राहतें कैसी। लोग बदल जाते हैं दिल भर जाने पे भी, लोग बदल जाते हैं दिल भर जाने पे भी। ला हासिल तलाश चेहरों में तब शबाहतें कैसी, ला हासिल तलाश चेहरों में शबाहतें कैसी। हर फर्द ही बना है खुद साख्ता पारसा यहाँ, हर फर्द ही बना है खुद साख्ता पारसा यहाँ। दुनिया दिखावे के लिए हों तो बातें कैसी, दुनिया दिखावे के लिए हों तो बातें कैसी। जब लहजे बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, जब वो लहजे बदल जाएं तो वजाहतें कैसी। नई मयसर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी, नई मयसर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी।

0: तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू आशिक है मैं तेरी आशिकी। ये तो जनाब शायरों का अब हजूम बढ़ गया हमारे स्टूडियो में। जनाब भी खुरम भाई हैं, वो भी हैं, वो शायर हैं या लिखारी हैं, जो स्टोरी लिखारी लिखते हैं जी, और राइटर हैं, और इरफान साहब हैं जो तो पिछले भी प्रोग्राम में शामिल जनाब। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये है महफिल जमती है, तो जैसे होते हैं ना परवाने शमा पर आते हैं, ये रेडियो है तो सारे शामिल हो रहे हैं माशाल्लाह। इसे बाद रखे इस रेडियो को और सब दोस्तों को भी तरक्कियाँ दे रेडियो को, और हम सबको भी से तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, और इस तरीके से रौनकें लगती रहें, बैठे रहें और बातें होती रहें, और शायद ही हम आपसे सुनते रहें आज। तो आने वाला गीत जो है वो सुनते हैं, सबसे पहले आज आपने थोड़ा सा यहाँ आके जी तो आज तो मोहब्बत पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ये भी शामिल करना चाहें भाई इरफान साहब को। कहते हैं मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, ऐसा है, मुकम्मल दो ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है, मुकर्रर वक्त पे वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है।
1: क्या बात है, अर्ज करना चाहूंगा कि इश्क में अपनी मर्जी का कोई वजूद नहीं। क्या बात है महबूब साहब, मैं आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि इश्क में अपनी मर्जी का कोई वजूद ही नहीं, बस यार हाकिम और तुम महकूम।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब जी। आप भी नहीं तो शाह साहब, आप कुछ कहना चाहें?
2: नहीं,
0: मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, उसे तकने से नियत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पे कायम, मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पे कायम, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है, मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है।
2: हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज,
0: वाह,
2: इसको महबूब बनाए रखना,
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये गीत जिस ही मौके पर ये गीत,
2: एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, वो भटक जाते हैं कई जिनके खुदा होते हैं।
0: वाह वाह वाह, बहुत सागर से देखिए,
1: बिल्कुल।
0: तो जी ये शाह साहब के नाम भी करते हैं, सब सामीन के नाम, और इरफान भाई और खुरम भाई सभी के नाम, ये गीत जो आइए समाज सुन भाई।

0: सामिन अभी आप बात कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस दौरान प्रोग्राम में शामिल हुए बाइशकील साहब। आपको पता है हमारी महफल के मेहमान खसूसी हैं, और इनकी हर रेडियो पर सुने जाने वाली आवाज़ बाइशकील की साहब की है, और वो तशरीफ ला चुके हैं तालियों की गूंज में। सबसे पहले तो उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए कौन सा पसंद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जी तालियों गूंज में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: शुक्रिया बहुत बहुत। कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया का।
1: ठीक है आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, और हमारे स्टूडियो में अभी शाह साहब थे वो तो चले गए खुरम भाई के साथ, और भाई इरफान है जो अभी आइंदा हमारे प्रोग्राम में ये अपना प्रोग्राम करेंगे। आज तो वे दोबारा हमारे प्रोग्राम में एज ए मेहमान है, और टिकटॉक पर भी ये छाए हुए हैं जनाब, तो टिकटॉक पर भी होंगे वो भी आज हमारे साथ हैं।
1: अच्छा, तो उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: असली मीर साहब हैं, अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, जंगीर भाई, आसिफ यासर साहब, नवीद भाई हैं, तारिक भट्ट, तारिक जुल्फी साहब हैं, इकबाल भाई, अपने माजिद भाई आए थे, उनको भी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साहब की तरफ
1: से सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: एक गर्ज लाया हूं, ये तमाम सादिक इनका नाम है लिखने वाले।
0: जी
1: वो कहते हैं, चुभन से दर्द से कुर्बत बढ़ा रहा है कोई। चुभन से दर्द से कुर्बत बढ़ा रहा है कोई, दियारे दिल से कहीं दूर जा रहा है कोई।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। उसे बताओ खुशी देर तक नहीं रहती।
0: उसे बताओ खुशी देर तक नहीं रहती,
1: मेरे गमों पे बहुत मुस्कुरा रहा है कोई।
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: मेरा ही नाम नहीं है मेरी कहानी में, कि मुझसे जात को मेरी छुपा रहा है कोई।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: तमाम शहर में एक घर यही था उर्फत का। तमाम शहर में एक घर यही था उल्फत का, यहाँ भी मौत का बिस्तर बिछा रहा है कोई।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत खूब।
1: मेरे लहू को छिड़क दो तमाम गुलशन में।
0: मेरे लहू को छिड़क दो तमाम गुलशन में, वाह।
1: मेरी वफाओं के उंगली उठा रहा है कोई।
2: वाह भाई वाह
0: वाह वाह,
2: क्या बात है,
1: शुक्रिया। किसी की याद के जाले हैं मेरे हुजरे में।
0: किसी की याद के जाले हैं मेरे हुजरे में, वाह।
1: उदासियों से मेरा घर सजा रहा है कोई।
2: क्या बात है,
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया,
2: बहुत खूब।
1: मैं उससे बात तो कर लूं मगर रुको सादिक। मैं उससे बात तो कर लूं मगर रुको सादिक, मेरे अंदर से सिदाए लगा रहा है कोई।
0: वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब,
1: शुक्रिया,
2: क्या बात।
1: तो एक गजल है, सैयद मसूद हसन का नाम है।
0: जी
1: वो कहते हैं, मैं क्या समझूं तेरे वादे से क्या इजहार होता है।
0: मैं क्या समझूं तेरे वादे से क्या इजहार होता है, वाह।
1: कभी इकरार होता है कभी इनकार होता है।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। किसी से कब किसी के दर्द का इजहार होता है। वही अपनी हालत बता सकता है जो बीमार होता है।
0: जो बीमार होता है, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: फिर कहते हैं, जुलेहा को मिले जज्बात के इजहार का मौका। अब बाजार उल्फत मिस्र का बाजार होता है।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: बजुज जाते खुदा किसका सहारा है जमाने में। बजुज जाते खुदा किसका सहारा है जमाने में, मुसीबत में भला कोई किसी का यार होता है।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब,
2: शुक्रिया।
1: निगाहों में हुआ करता है बेआना मोहब्बत का। निगाहों में हुआ करता है बेआना मोहब्बत का, ये वो सौदा नहीं जो सरे बाजार होता है।
0: ये वो सौदा नहीं जो बसरे बाजार होता है, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: नजाकत चार आंखें भजम में करने नहीं देती। नजाकत चार आंखें बजम में करने नहीं देती, किसी की खातिर नाजुक पे ये भी बार होता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात।
1: शेर कहते हैं, مسیحا بھی اتر آئے تو کیا امید جینے کی. مسیحا بھی اتر آئے تو کیا امید جینے کی. کہیں مسعود اپنا کہیں سعود اچھا عشق کا بیمار ہوتا ہے.
2: اس کے بیمار
1: مسیحا بھی اتر آئے تو کیا امید جینے کی. کہیں مسعود اچھا عشق کا بیمار ہوتا ہے. تو یہ غزل تھی. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ٹائم دینے کا.
0: بڑی بہت شکریہ تشریف لانے کا, آپ کا بہت شکریہ اور اتنی پیاری غزلیں سنانے کا. کچھ آپ اشعار پیش کہنا چاہیں گے؟
2: ماشاءاللہ شکریہ جی, بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ غزلیں سنائی ہمیں.
1: ٹھیک ہے, خدا
2: حافظ. کیا بات
0: ہے جی, خدا حافظ جی. تالیاں گونج میں آپ کو الوداع کہتے ہیں جی. جی یہ تھے بھائی شکیل صاحب برلے سے. آپ کو پتا ہے سامعین تشریف لاتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک شاعری ہوتی ہے ان کے پاس, اور اردو بھی ہوتی ہے, پنجابی بھی ہوتی ہے, اور کمال کرتے ہیں, کمال ہیں اور کمال ہی کر کے جاتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک کلام. تو جناب آنے والا گیت جو تھا وہ ہم نے کیوں کیا ہے پتہ نہیں کون سا ہے, تو آپ کچھ سنانا چاہیں گے پھر آپ تشریف لائیے ادھر اور آپ پلے کیجیے آ کے پروگرام باقی کے جو گیت ہیں.
2: جی
0: جی یہ میرا بیک گراؤنڈ فی الحال استعمال کریں پھر آپ کا اپنا آئیے.

0: जी हाँ सामिन, अब हमारी जगह भाई इरफान बैठेंगे और वो आपको गजलें भी साथ सुनाएंगे और साथ अशार भी। आज दूसरा दिन है इनका ट्रेनिंग का और लगता है ट्रेंड हो चुके हैं। अब वो अपनी कार्रवाई करके बताएंगे और आपको कलाम गजलें भी सुनाएंगे और अशार भी। जी भाई इरफान, आपका मैक आपके पास हवाले।
1: माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम सब सामाइनो कराम को। तो आप सलामत रहें, हमेशा सलामत रहें। जो हमारी कॉल्स पे हैं उनका मैं मशकूर हूँ, जो बाय नेम मुझे जो है ना दाद भी दे रहे हैं और साथ जो है ना दुआएं भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी आपके साथ है मोहम्मद इरफान हैदर, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक गज़ल डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, जितने भी सामाइन हैं। ठीक है, तो इसको आप समात फरमाएं। कच्ची दीवार हूँ, ठोकर ना गिराना मुझको। ठीक है, तो सुने गुलाम अली साहब की और इंजॉय करें।

माशाल्लाह क्या बात है जी, आप समाअत फरमा रहे हैं। गुलाम अली साहब को अर्ज करना चाहूंगा कि रात टूट पड़ती है जब सकूते जिंदा पर, रात टूट पड़ती है जब सकूते जिंदा पर, कोई छुप के मेरे ख्यालों में गुनगुनाता है। जुड़े रहिए प्लीज़।

ठोक कर न गिराना मुझको, कुछ फैसला हो तो किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। जब भी गए अजाब दरो बाम था वही, आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए।

0: रहे थे जनाब भाई इरफान को, वो आपको उन्होंने गजल सुनाई बहुत ही प्यारी, और हमें भी बहुत लुत्फ आया। ये होता है कि ये जो सुखनवर होते हैं, शायर लोग होते हैं, इनकी तस्वीर एक अपनी होती है। गाने गाने वाले शौक रखने वालों का एक अपना है सिलसिला, लेकिन शायरों का इतना डूब जाना ऐसे कलामों में और बातों में करते करते, और जिस वक्त हम इन लोगों को देखते हैं हैरान होते हैं कि ये कहाँ से लेके आते हैं ये अल्फाज, इतनी गहराई किस से ये ढूंढ ढूंढ के ये मोती परोते हैं, जब तो किताबों में जो आते हैं सुनते हैं हम पढ़ते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो लिख कर चले जाते हैं और देर तक लोग जो है ना उन्हें याद रखते हैं,
1: सही बात,
0: तो बहुत ये खास अल खास अता है अल्लाह की तरफ से, हर
1: बिल्कुल।
0: बंदे को नहीं होते। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और हमें अच्छा लगा आपने बहुत ही प्यारी गज़ल हमारे नाम किया रे में सुनाई,
1: जजाक अल्लाह खैर,
0: और मैं यही कहता था कि ये गज़ल जो होती है ना ये दिल पर असर करती है,
1: सही बात,
0: गीतों का भी है, लेकिन जो असर ये कर दे, जो चोट ये लगाती है
1: सही
0: वो नहीं
1: बात,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत प्यारी गज़ल आपने सुनाई। अभी वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर चंद अशआर शामिल कर लें तो ब्रेक तक वो कुछ अगर
1: बिल्कुल,
0: आप।
1: लास्ट में जी
0: जी
1: ना,
0: जी
1: मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश
0: तलाश
1: कर।
0: कर। जी हाँ, वक्त आ जाता है
2: रेडियो। Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
5: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: जी हाँ, तशरीफ ला चुके हैं जी इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: इकबाल भाई
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हेलो भाई इकबाल,
1: आपकी
0: किधर चले गए हैं? कहीं लाइन छोड़कर तो नहीं चले गए? कहाँ चले गए भाई इकबाल?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: हेलो जी। हाँ चलिए जी, उनका पसंदीदा गीत प्ले कर देते हैं और हो सकता है फिर दोबारा कॉल करें, उनकी आवाज नहीं आ रही, कुछ हूँ हाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये गीत आपके नाम करते हैं जी।

0: इसी के साथ ही इकबाल साहब को आने लेते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम महबूब भाई, कैसे हैं आप?
0: हेलो
1: हेलो, आवाज आ रही है आपको
0: भाई इकबाल?
1: नहीं आवाज नहीं आ रही आपको।
0: आ रही, आ रही, अभी आ रही है
1: आवाज। आ रही है अभी?
0: जी जी आ रही है।
1: वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं महबूब भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई इकबाल, शुक्र अल्लाह का, बहुत इंतजार है भाई। शकील पूछ रहे थे भाई इकबाल साहब नहीं आ रहे, मैंने कहा वो पंजाबी में कहते हैं टू भी मार जाते हैं।
1: वो पता की गल है ना, तुहाडे टेलीफोन या लाइनां जिहड़ियां हैगियां ना, इहनां ते WD-40 मारो ठीक हो जाणगे। सर्दियां भी आ गईयां ना, हुण गड्डियां भी WD नाल स्टार्ट हुंदियां ना हुण।
0: हां इह ते है,
1: की हाल है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
1: ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪ? ਠੀਕ ਠਾਕ?
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ।
1: ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੋਂ ਸੇ, ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ, ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਸੇ।
0: ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ UK ਕੀ।
1: ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਰਥਡੇ ਥੀ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਬਹੂ ਕੇ ਘਰ, ਯਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਤੀ ਹੈ। तो फिर मुझे बेगम घर छोड़ गई, कहती तुम घर रहो तो थोड़ा बहुत तो मेरे लिए ना वो छोड़ गई, खाना छोड़ गई तो ये खा लेना।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अभी खाना खाए चाय पिए, तो मैंने सोचा चलो आपको कॉल कर लेता हूँ, आपसे बातचीत हो जाए।
0: चलो जी, बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी, तो बेगम एक लतीफा है, बेगम ने शादी के बाद एक फरमाइश कर दी मियाँ से कि मुझे सोने की चेन कब लेकर दोगे।
0: अच्छा।
1: तो मियाँ कहता है मुझे सोने कब दोगी।
0: अच्छा, बहुत खूब।
1: तो वो कहते हैं ना, बस ऊपर वाले ने हर इंसान को मतलब बनाया है, डिफरेंट बनाया है। तो कुछ ऐसे लोग है हमारे बहन भाई जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, आंखें नहीं होते। तो इसके ऊपर एक लाइन पर एक शेर है, वो कहते हैं मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर। महबूब भाई, मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
0: हाथ नहीं होते, वाह इकबाल वाह, छा गए जी।
1: सानू ते गरीबां नाल प्यार है, साडे गरीब भैण भरावां नाल ही प्यार है मेरे भाई।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: दुनिया दे ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो औलाद जो है छोड़कर चली गई है, जो दूसरों से वो हेल्प मांगते हैं, यकीन करें। हम मेरे पास से गारंटी रहती है, बेचारी चार बेटे हैं, वो पूछते भी नहीं उसको। मियाँ फोत हो गए ना, कोई 20 साल हो गए, बस आ जाती कभी भी, भाभी के साथ बैठ जाती, गप शप लगाती है, क्योंकि हालात आजकल इतने बुरे होते जा रहे हैं महबूब भाई। यहाँ अपने बुजुर्ग में देखो ना, कभी कभी यंगस्टर भी मैं देखता हूँ, रो रहे होते हैं घरों में, वो रास्ता रहा ही नहीं, खत्म हो गया अभी आजकल, वो चीजें खत्म हो गई, वो प्यार मोहब्बत लोगों में नहीं रहा,
0: नहीं रहा, बेचक ये तो है।
1: और पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, और ये पैसा भी ऐसा है, वो कहते हैं ना अंग्रेज में मनी इज ईवल, इट डिस्ट्रॉयज यू, एक दिन आपको उसको बर्बाद कर देगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सीढ़ियों से गिरते हुए भी देखा है। तो क्या फायदा पैसे, अपने माँ बाप को टाइम दो, बहन भाइयों को टाइम दो, मियाँ बीवी को टाइम दो, यही जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से रहो। ये जो जेलसी आ गई ना लोगों में आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों जेलसी।
0: भाई भाई इकबाल, अगर सबको टाइम दे तो काम किस टाइम करें यहाँ?
1: सही बात, टाइम निकालो, बहन भाइयों से मिलो, माँ बाप से मिलो। यहाँ एक मेरी आंटी रहती लीज रोड पर, उसका एक बेटा है लंदन रहता है, वो यानी 30-35 सालों से काम कर रहा है वहाँ, लेकिन हर साल यानी ये वो क्या कहते हैं, क्रिसमस को आकर माँ को मिलकर चला जाता है, 2 दिन रह के चले, फोन भी नहीं करता, टेक्स्ट भी नहीं करता, कोई रास्ता नहीं माँ से, कुछ भी नहीं, वो इतना बिजी है, नोट कमा रहा है, उसको माँ की फिक्र ही नहीं किधर है, जिंदा है या मर गई है। ऐसे हालात आ गए हैं, इसलिए क्यामत आ गई ना दुनिया पर, ये देखो जो हो रहा है क्यामत ही है ना, क्यामत की निशानी है।
0: बिल्कुल।
1: और 5-10 साल जो होंगे ना, आप देख लेना जो कुछ होगा दुनिया में, यहाँ तो खून के आंसू लोग बहा रहे होंगे।
0: जी जी, ये दुनिया बहुत मुश्किल है, ये जिंदगी बहुत दुखों का घर है भाई इकबाल।
1: वो वक्त और था महबूब भाई, जहाँ माँ कहती थी ने टीए तो लाल जोड़े ही चली थे, उत्थे तेरा जनाजा निकलना सफेद कपड़े दे विचे, ते अजकल इत्थों शादी होनी ते इत्थों फिर तुहानू पता ही है, फिर समझ गए ने। 70-80 हज़ार पाउंड तुसी लांदे हो पुत्र दे उत्ते, धीआं दे उत्ते, कैंडे दे उत्ते, फिर साल 2 साल नहीं लंघदे फिर खत्म।
0: जी जी जी जी,
1: वो बरकत नहीं रहेगी, कोई चीज ही बरकत नहीं रहेगी आजकल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो
1: यार ही नहीं रहा तो बरकत की थोड़ी रहेगी फिर।
0: जी हाँ,
1: जालसी है ना, जालसी जालसी हर इंसान दूर कर छोड़ता है, पैसा दूर कर छोड़ता है।
0: ये तो है।
1: तो चलो, मैंने जब तक मैं तो एक ही माँ का बेटा था ना, और 6 मेरी बहने थे, तो 2 तो गुजर गई, अम्मी तो गुजर गई, बाप भी गुजर गया, लेकिन मैंने जब तक वो जिंदा थी मैंने साथ दिया अपनी अम्मी का, बहुत दिया साथ, वो इतनी दुआएं मुझे देगी, यकीन करो अभी मैं कभी कभी अकेला बैठ के कभी बस तनाई में रोता हूँ कि उनकी बातें मुझे बहुत याद आती हैं।
0: मुझे याद आता है जब मैं पहले पहले आपके पास आया तो आंटी से मुलाकात होती थी, वो सैटी पर बैठी कुरान-मजीद पढ़ रही होती थी, मैं कहता था आंटी जी भाई इकबाल के लिए दुआ करते रहती हैं, हमारे लिए भी कीजिए। बोलते हैं नहीं, मैं सबके बच्चों के लिए करती हूँ, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं सबके लिए करती हूँ बेटा।
1: बस ऐसे ही है, दुनिया चलती है, चलती आएगी और चलती रहेगी, इसी तरह खत्म हो जाएगी एक दिन।
0: बिल्कुल, चलो चली तो मिल रहा भाई इकबाल साहब, इतने करोड़ा चेहरे करोड़ा लोग आए चले गए, मालक दी बनाई गए ने, ओदी सदा ओदी बादशाह ही है ते उन्हें रहना, ओदी बादशाह ही रहनी है।
1: वो गलत थी, सही है, वो जो पुराने लोग थे ना जो 50-60 साल पीछे चले जाए, वो ओल्ड इज गोल्ड, उनके आप मुकाबला नहीं कर सकते उन लोगों।
0: ये सर दर्दें उस वक्त भी थी, लेकिन आज जरा ये है कि हर एक दूसरे घर का भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हर एक घर की बातें बाहर आती हैं, पहले घर की बातें बाहर नहीं आती थी ज्यादा, लेकिन हाँ इतना मसरूफ नहीं था इंसान जितना अभी है, लेकिन इससे ये अगर ये झगड़े ना होते तो ये इंसानों के सिलसिले, ये जो जितनी ऊंचाई ढलान जिंदगी में है ना, ये इसी वजह से इंसान ने तरक्की किया, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए दिखावे के लिए जो भी हुआ उसने कोशिश करके यहाँ तक इंसान पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल सही है।
0: तो आज हम समझते हैं कि ये जो है जी ऐसा है वैसा है, हाँ पहले लोगों के पास टाइम था, काम नहीं था, फारग थे, फसलें का काम होता था, 6 महीने फसलें उगाने के टाइम, उस टाइम लोग काम करते थे, बाद में फारग होते थे, पानी लगा दिया, बैठ के परिंदों को उड़ाया, जानवरों को देखा, यही सिलसिले थे सारे, शहरों में थोड़ा सा काम जिंदगी बीती थी, अभी तो कहीं पर भी कोई भी बंदा नहीं है, किसी का गुजारा ही नहीं है, जो आराम से बैठेगा उसका तो गुजारा ही नहीं होता,
1: कोई मिलता ही नहीं, किसी को कोई फोन नहीं करता, किसी को पता नहीं और नेबर मरा हुआ है जिंदा है, कोई पता ही नहीं लोगों को आजकल क्या हो रहा है दुनिया में।
0: लाइफ बहुत बिजी हो गई।
1: वो कहते हैं ना वो कच्चे मकान थे वो सच्चे लोग थे, मकान दिल छोटे हो गए, पत्थर बन गए। चलो एक शेर सुना देता, डायलॉग सुना देता हूँ फिल्म अग्निपथ का।
0: जी जी,
1: जैसे आप कहते हैं ना तो यहाँ बिग बी यानी अमित जी पानी समुद्र से बाहर निकलता है तो अपने वो कांचा सेठ के पास जा रहा होता है जो उनका दुश्मन वेट कर रहा होता है, तो उसको कहता है वक्त पे पहुंचने का अपना पुराना आदत है, आज थोड़ा लेट हो गया है इसलिए माफी चाहता है, वो कोई साल हमारे ऊपर है किचन उछाल है, मैं सोचा उसके पानी से दो डाले इधर, मैं विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, कंच के मेल में रहने वाला कंचा सेठ है, मैं पहले तुमको मिल चुका है, वो बचपन में तुम्हारा गाड़ी साफ करता था कपड़े के साथ है, आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाने आया हूँ है। कैसा लगा बाबू?
0: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी, भाई इकबाल बहुत, ये तालियों की गूंज में जनाब, बहुत जबरदस्त।
1: हेलो
0: जी जी,
1: ओके फिर आपने ख्याल रखना, मैं बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आऊंगा।
0: हाँ ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी तशरीफ लाने का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इकबाल,
1: बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम, ये थे भाई इकबाल साहब, तालियों की गूंज में जनाब, बंदे अलविदा कहते हैं, आपको पता है हर मौजू पर किसी न किसी मौजू के साथ छेड़ देते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो है ना स्पेशल डायलॉग इनसे सुनने वाले होते हैं, तो ये गीत इनका स्पेशल पसंदीदा गीत होता है, इनको गीत सुनाते हैं साथ साथ।

जी हाँ भाई, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। जनाबे वाली भाई इकबाल का पसंदीदा गीत है ये। जब वो एंट्री मारते हैं तो कहते हैं ये गीत हमारे लिए ज़रूर प्ले किया करें, तो हमने इसलिए इसको क्यों कर लेते हैं जिस वक्त भी इकबाल भाई तशरीफ लाते हैं। और इस दौरान प्रोग्राम में शामिल हुए भाई वसीम अब्बास, भाई इरफान के भाई हैं, उन्होंने कॉल की। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई वसीम अब्बास साहब। तो भाई इरफान तो अभी चले गए, आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और आंदा भी आपका इंतजार रहेगा आपके फ़ोन का। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हौसला अफजाई का। और आप प्रोग्राम सुन रहे थे, आपको अभी टाइम मिला, आपने कहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और उन्होंने गज़ल भी प्ले की थी, बहुत ही प्यारी गज़ल थी गुलाम मलिक की, और उम्मीद करते हैं वो भी आपको पसंद आई होगी। आंदा वो अपना प्रोग्राम का शेड्यूल बताएंगे कि इस टाइम किस वक्त उनका प्रोग्राम होगा, और हो सकता है हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएँ या फिर वो अपना ही प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो आपको बता देंगे। तो कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और वक्त हुआ चाहता है जनाब इसी के दौरान ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर हमने लेनी होगी इजाज़त। ये अशआर आपकी नज़र करेंगे भाई वसीम अब्बास, और ये गीत भी आपकी नज़र। और भाई इकबाल आपका भी बहुत शुक्रिया, भाई शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई माजिद आपका भी बहुत शुक्रिया, जो साथी तशरीफ लाए भाई तारक जुल्फी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी मुजफ्फर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा हो ये शाम डले, कुछ ऐसा हो ये शाम डले, कोई ले के मुझको साथ चले। कुछ ऐसा हो ये शाम डले, कोई ले के मुझको साथ चले। कोई बैठे मेरे पहलू में, कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ धरे। कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ धरे। और पूंछ के आंसू आंखों से, और पूंछ के आंसू आंखों से, वो धीरे से ये बात कहे। वो पूंछ के आंसू आंखों से, वो धीरे से ये बात कहे। यूं तन्हा चलना ठीक नहीं, यूं तन्हा चलना ठीक नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। यूं तन्हा चलना ठीक नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। कुछ ऐसा हो ये शाम डले, कोई ऐसा हो ये शाम डले, कोई लेके मुझको साथ चले, कोई लेके मुझको साथ चले।

क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये ओरिजिनल गीत नहीं है लेकिन फिर भी गुजारा चलेगा। इसके साथ ही सामने हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इस दुनिया कायनात में सबसे हसीन चांद है और उसमें भी दाग है, मुकम्मल सिर्फ हमारे रब के और उसके महबूब की ज़ात है। इंसान खताकार है, उन्हीं में से हम भी एक हैं। दुराने प्रोग्राम हमसे भी गलती कता ही होगी हो तो उम्मीद करते हैं आप अपना समझ के हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे इस जहाँ में और अगले जहाँ में भी। इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें और मुस्कराते रहें। अपने प्रेजेंटर, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई महबूब इलाही को दीजिए इजाज़त। हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और हम सब का अल्लाह निगहबान।

0: This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1430 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.

You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.